ओके ओके सर ओके, टाइम चेक कर लीजिए, 5:24:33 और स्टूडियो घड़ी में हो रहा था और अलॉन्सर बुथ की घड़ी में 5:44:24:43 हुआ है। अभी वर्क स्टेशन 2 की टेस्टिंग सुन रहे थे, अब वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन सेकेंड से फर्स्ट से वेद भारती से पीसी ठीक है सर, टाइम टेस्टिंग ओवर।